0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, सांभता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: ओ मारा पालनपुर।
2: થયા છે લોક ભેગા કેમ આશાની ખુશાલી છે કોઈ

0: ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम? बहुत जी चाहता है फिर से बोऊं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को। बहुत जी है कि फुर्सत हो, तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। मगर जाना, एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता। मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने के लिए भी थां नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम?
1: ज्यादा

बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म डूबान जल रहा है।

0: गुलजार साहेब एक बहुत मजानी बात कहे छे कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। सांभळीए आपणे गुलजार साहेब ने पछी साथे एमनो बैक टू बैक मस्त मजानो सॉन्ग साथे।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, लबों की मध्यम तवील सरगोशियों में सांसें उलझ गई थीं, उंधे हुए साहिलों पे जैसे कहीं बहुत दूर ठंडा सावन बरस रहा था, बस एक ही रूह जागती थी। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी। कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं अपनी नज्मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से, वो घूर के देखती हैं मुझको, सवाल करती हैं उनसे मैं हूं या मुझसे हैं वो। वो सारी नज्में कि मैं समझता हूं वो मेरे जीन से हैं, लेकिन वो यूं समझती हैं उनसे है मेरा नाक नक्शा, ये शक्ल उनसे मिली है मुझको। मिजाज पूछूं मैं क्या, एक नज्म आगे आती है छू के पेशानी पूछती है, बताओ अगर इंतशार है कोई सोच में तो मैं पास बैठूं, मदद करूं और बीन दूं उलझने तुम्हारी। उदास लगते हो एक कहती है पास आकर, जो कह नहीं सकते तुम किसी को, तो मेरे कानों में डाल दो राज अपनी सरगोशियों के, लेकिन गर एक सुनेगा तो सब सुनेंगे। भड़क के कहती है एक नाराज नज़्म मुझसे, मैं कब तक अपने गले में लूंगी तुम्हारी आवाज की खराशें। एक और छोटी सी नज्म कहती है, पहले भी कह चुकी हूं शायर, चढ़ान चढ़ते अगर तेरी सांस फूल जाए तो मेरे कंधों पे रखते कुछ बोझ मैं उठा लूं। वो चुप सी एक नज्म पीछे बैठी जो टकटकी बांधे देखती रहती है मुझे, बस न जाने क्या है कि उसकी आंखों का रंग तुम पर चला गया है। अलग अलग हैं मिजाज सबके, मगर कहीं ना कहीं वो सारे मिजाज मुझ में बसे हुए हैं। मैं उनसे हूं या हाँ, मुझे ये एहसास हो रहा है जब उनको तख्लीक दे रहा था वो मुझको तख्लीक दे रही थी। एक नकल तुझे भी भेजूंगा ये सोच के ही, तन्हाई के नीचे कार्बन पेपर रख के मैं ऊंची ऊंची आवाज में बातें करता हूं। अल्फाज

0: उतरते हैं कागज पर, लेकिन आवाज की शक्ल उतरती नहीं, रातों की स्याही दिखती है।
1: यादें
0: जैसे छन्ना के चटक जाए किसी साज का एक तार, जैसे रेशम की किसी डोर से कट जाती है उंगली, ऐसे एक जर्ब सी पड़ती है कहीं सीने के अंदर, खींचकर तोड़नी पड़ जाती है जब तुझसे निगाहें। तेरे जाने की घड़ी आह बड़ी सख्त घड़ी है।

बस एक झगड़े का लम्हा था। दरो दीवार पर ऐसे छनाके से गिरी आवाज जैसे कांच गिरता है। हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें, नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर। लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब्द किसी ने काट ली नब्जें, न की आवाज तक कुछ भी कि कोई जाग न जाए। कुछ ऐसे आकर गिरा है सोते में शाख से फूल मेरे चेहरे पे, जैसे हौले से रात तुम नाम लेके मुझको जगा रही थी। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। रात भी वैसे ही सर मुंदे आती है, दिन वैसे ही आंखें मलता जागता है। तारे सारी रात जमाइयां लेते हैं। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। काश तुम्हारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में। प्यास न लगती पानी की, या नाखून बढ़ना बंद हो जाते। बाल हवा में न उड़ते, या धुआं निकलता सांसों से। सब कुछ वैसे ही चलता है, बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में। नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है। खोल कर बाहों के दो उलझे हुए मिसरे, होले से चूम के दो नींद से छलकी पलकें, होंठ से लिपटी हुई जुल्फ को मिन्नत से हटाकर कान पर धीमे से रख दूंगा जो आवाज के दो होंठ।

मैं जगाऊंगा तुझे नाम से सोना, और तुम धीरे से जब पलकें उठाओगी ना उस दम, दूर ठहरे हुए पानी पे सहर खोलेगी आंखें, सुबह हो जाएगी तब, सुबह जमीन पर। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव थापा, रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव थापा। मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी हैं, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी। तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी। रात भर जो भी मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे। रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गर्माइश पर, सीली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तोला कुछ भी नहीं। लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। मुंह मोड़ा

0: लड़े थे हम दोनों, आप लड़े थे हमसे बस एक करवट की गुंजाइश पर। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर, दिल में कितने खुश थे अपनी फुरकत की आराइश पर। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूं टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं। चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी, जिस्म सौ बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है।
1: ज्यादे
0: कल की रात गिरी थी शबनम, हौले हौले कलियों के बंद होंठों पर बरसी थी शबनम। फूलों के रुखसारों से रुखसार मिलाकर नीली रात की चुंदरी के साए में शबनम परियों के अफसानों के पर खोल रही थी। दिल की मध्यम मध्यम हलचल में दो रूहें तैर रही थीं, जैसे अपने नाजुक पंखों पर आकाश को तोल रही हों। कल की रात बड़ी उजली थी, कल की रात उजले थे सपने, कल की रात तेरे संग गुजरी। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। कल सुना है जमी से उठ गया है वो। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात। तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी, पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से जरस की जले नमनाक सदा, और झुकती हैं तो बस जैसे अजां खत्म हुई है। तेरी आंखें तेरी ठहरी हुई गमगीन सी आंखें, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है सच्ची, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है ये हयात।

0: તો મિત્રો, આજનો શો તમને બહુ જ ગમ્યો હશે, કારણ કે ગુલઝાર સાહેબની વાતોની સાથે સાથે એમના લખેલા કેટલાક મશહૂર સોંગ્સ પણ આપણે સાંભળ્યા. અને હવે આરજે હર્ષને આપો રજા, હું લઉં છું અલવિદા, અને તમે સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM ગુજરાત, અને એન્જોયમેન્ટ કરતા રહો આરજે હર્ષની સાથે.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026

0: तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को

0: कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होते हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गाँव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गाँव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी। उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी।

0: उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: वी आर गुड सर।
3: आई एम गुड सर।
4: वी आर गुड।
1: हाउ आर योर पेरेंट्स, brothers, sisters and grandparents?
2: All are good.
1: All are well? That's nice. And what about your pets?
5: Sir, I have a dog.
6: Sir, we have a cat.
1: Okay, so how does a cat call?
2: Meow, meow, meow.
1: Do you think that pets are very special members of your family?
2: Yes, sir.
7: Sir, my pets are my friends.
8: They are very lovely.
9: My cat is very cute, sir.
1: So nice. Tell me, do you like traveling?
2: Yes, sir.
10: I like to go different places on my holidays.
11: I feel very happy when I go to my grandparents.
1: That's great. How do you go?
11: We go to see grandparents by bus.
1: That's very fine.

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहाँ हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
7: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
6: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
8: चलो।

0: चली भाई रेल चली,
1: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
2: हाँ दादाजी हम भी थक गए।
1: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
2: अच्छा
1: अच्छा अब ये बताओ तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
3: दादाजी मैंने देखी है।
1: अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
1: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
2: अरे वाह
1: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
2: हाँ आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
1: अरे ओ रामू भैया कहाँ जा रहे हो?
4: अरे दादाजी स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
1: अरे भैया तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
4: अरे हाँ हाँ दादाजी आओ आओ बच्चों आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
1: बैठो बैठो जल्दी करो
2: जल्दी करो
1: बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो उतरो बच्चों जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
4: उतरो उतरो
3: रानी जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
1: हाँ हाँ उतरो बेटी।
5: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
2: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा। कुछ जाने वाले हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों वो देखो वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
2: हो रेलगाड़ी आ गई रेलगाड़ी आ गई।
3: अरे वाह दादाजी ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों देखा ये है सचमुच की रेलगाड़ी, वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
2: दादाजी वो देखिए एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
2: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों चलो चलो वापस घर चले।
2: हाँ हाँ दादाजी चलिए।
6: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक छुक

के पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक।

पे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक।

0: શ્રોતા મિત્રો, તમે સાંભળી રહ્યા છો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર, કોમ્યુનિટી રેડિયો સ્ટેશન બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેળવણી મંડળ સંચાલિત. આ રેડિયો સ્ટેશન પર તમારા પ્રતિભાવો, તમારા સંદેશાઓ અને તમારી વાતોને મોકલી આપવા માટે તમે 90.4 FM રેડિયો પાલનપુરના ફેસબુક પેજ પર જઈ શકો છો અને તમારી વાત.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मित्रों, जिंदगी में हमेशा आपणे सांभळता आवीए छीए कि कोई पण कार्य

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि

0: सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ दूर रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

भी प्रूव की। मैं बात कर रही हूँ सिंगर सनम पुरी की, जिनके बैंड का नाम भी है सनम। अब देखिए, पर्सनली मुझे इनके गाने कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि सनम पुरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरा इसलिए भी कि जिस तरह से ये 60s, 70s, 80s के गानों को रिक्रिएट करते हैं, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, जो सोल है गाने की, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर म्यूजिक। वैसे आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि सनम पुरी, जो कि सनम बैंड के लीड सिंगर हैं, उन्हें म्यूजिक के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा था कि वो एक्टिंग भी करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने फ्री स्टाइल डांसिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने म्यूजिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया। वैसे जानते हैं आप, सनम पुरी के बैंड का नाम पहले सनम नहीं, कुछ और था। बताऊंगी इस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज का शो उनके पहले सुपर डुपर हिट कवर सॉन्ग के साथ, जो कि था लग जा गले। बड़ा ही प्यारा वर्जन है, सुनिएगा जरा।

आज के सारे पुराने गानों का कवर वर्जन सनम बैंड के बनाए हुए ये गाने जो आप सुन रहे हैं वो सभी मेरे सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। वैसे हर बैंड के फॉर्मेशन के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। सनम बैंड की कहानी ये है कि 2003 में वेंकी जो कि बेस गिटारिस्ट है और समर जो कि लिरिसिस्ट या लीड गिटारिस्ट या कंपोजर सभी चीज़ें हैं, ये दोनों मस्कट में बैचमेट्स हुआ करते थे। दोनों को ही म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था तो इसीलिए दोनों ने एक बैंड फॉर्म करने का सोचा, जिसके लिए समर ने अपने छोटे भाई सनम को कॉन्टैक्ट भी किया कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ हमारे साथ में एज अ सिंगर। लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये स्कूल कॉलेज में जो बैंड्स बनते हैं वो अक्सर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि समय जो है वो सभी लोगों को अपनी अलग अलग राह में अलग अलग दिशा में भेज देता है। सनम और समर दिल्ली चले गए थे, कॉलेज के लिए इंडिया आ गए थे और दिल्ली चले गए थे और वहीं अपने कॉलेज के रॉक सर्किट्स में बिजी हो गए। सनम पुरी को उनके सिंगिंग के लिए अवार्ड्स भी मिलने लग गए थे। वहीं वेंकी बैंगलोर में बेस प्लेयर थे, बहुत सारे बैंड्स के साथ में वो प्ले किया करते थे। फिर एक कॉलेज के इवेंट के थ्रू वेंकी की मुलाकात केशव से हुई थी। फिर भी ये सभी लोगों का उस समय एक बैंड नहीं बन पाया था क्योंकि सभी लोग देश के अलग अलग कोने में रह रहे थे। फिर ईयर 2009 में समर और सनम मुंबई आए अपना म्यूजिक करियर बनाने के लिए। 2010 में सनम, केशव और समर ने एक नेशन वाइड पॉप बैंड हंट सुपरस्टार्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसके फाइनल राउंड में वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया। इस हंट में सनमपुरी के बैंड ने द SQS प्रोजेक्ट के नाम से एंट्री ली थी और जहां 1600 से भी ज्यादा इंडियन बैंड्स ने पार्टिसिपेट किया था वहां द SQS प्रोजेक्ट को विजेता घोषित किया गया, गिविंग द बैंड अ नेम ऑफ SQS सुपरस्टार्स। और कुछ ऐसे उनकी जर्नी शुरू हुई। बस उन्होंने अपने बैंड का नाम SQS क्यों रखा था और फिर सनम नाम कैसे मिला बताऊंगी कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनते हैं इसी बैंड का बनाया हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना, वर्जन ऑफ है अपना दिल तो आवारा है।

मैं हूं रुचि आपके साथ और आज आप द सनम बैंड के सभी गाने इनके कवर वर्जन ऑफ सम ऑफ आवर फेवरेट रेट्रो सॉन्ग्स जो सुन रहे हैं। वैसे मैं बात कर रही थी कि कैसे इनके बैंड का नाम पहले द एस क्यू एस प्रोजेक्ट था, वो इसलिए क्योंकि उस समय उनके बैंड में एक और एक मेंबर हुआ करते थे क्यूएश नाम से, तो इसलिए समर, क्यूएश और सनम इनके नाम पर ये एस क्यू एस बना था। लेकिन म्यूजिक हंट के फाइनल्स में जब वेंकी ने उन्हें ज्वाइन किया तब इस नाम का कोई महत्व ही नहीं बचा था क्योंकि अब और भी ज़्यादा बैंड मेंबर्स हो गए थे। फिर भी उन्हें इस नाम के साथ 3 साल तक काम करना पड़ा था क्योंकि एक म्यूजिक कंपनी के साथ उनका 3

सालों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। लेकिन फिर जब 3 साल पूरे हुए और उनकी मुलाकात उनके बिजनेस मैनेजर बेन थॉमस से हुई, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब एक नई शुरुआत करते हैं। वैसे नया नाम रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों का ये फीडबैक था कि जब भी कुछ वीडियोस या फिर इनके गानों के लिंक्स लोगों को ये फॉरवर्ड करते थे, मैसेज करते थे, तब लिंक पे क्लिक करने से पहले लोगों को ऐसा लगता था कि SQS प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है और इसलिए वो लोग उस लिंक पे क्लिक ही नहीं करते थे। मतलब SQS प्रोजेक्ट डिड नॉट रियली फील लाइक अ बैंड्स नेम। तो फिर सनम और उनकी टीम ने बैंड का नाम चेंज करने की काफी डिस्कशन और कुछ 200-300 नाम सोचने के बाद, उनके नेम्स का कॉम्बिनेशन सोचने के बाद और फिर कोई भी नाम ना जमने के बाद, एक दिन एक शो के पहले ये लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और कहीं पर उन्होंने सनम इलेक्ट्रिक लिखा हुआ देखा। और बस क्या था, वो देखते ही इनके दिमाग में आया कि हमारा लीड सिंगर भी सनम है। सनम एक ऐसा नाम है जो कि यूजुअली हिंदी गानों में यूज किया जाता है, तो क्यों ना बैंड का नाम भी सनम ही रखा जाए। और कुछ ऐसे सनमपुरी के बैंड का नाम सनम ही बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं सनमपुरी को म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए एनकरेज किसने किया था? बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना। सनमपुरी की आवाज में है, सनम बैंड का ये रिक्रिएटेड वर्जन है। आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग क्योंकि इतने सिंपलिसिटी से इस गाने को इन लोगों ने परफॉर्म किया है कि मैं क्या बताऊँ। चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

आज हम सनम बैंड के सभी वो गाने आपको सुना रहे हैं जो कि उन्होंने 70s 80s के मेरे आपके फेवरेट गानों के रिक्रिएशन बनाए हैं, यानी कि कवर वर्जन्स बनाए हैं। और ये सभी खूबसूरत गाने आप मेरे सारे गामा कारवा से सुन रहे हैं। वैसे सनम पुरी को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट तो था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से प्रोफेशनली म्यूजिक सीखा नहीं था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट गिटार, कीबोर्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने खुद ही प्ले करना सीख लिया था। लेकिन फिर भी अपने स्कूलिंग के बाद सनम दिल्ली में रहे थे 7 सालों तक, और उसके बाद जब वो मुंबई आए तब जाकर उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली लेना शुरू किया। पर एक प्रॉब्लम थी सनम पुरी के साथ, जिसके बारे में वो खुद बताते हैं कि पहले ना वो सिर्फ गाने गाते थे लेकिन उन गानों को महसूस नहीं कर पाते थे, गानों के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट ही वॉजंट टू कम्फर्टेबल विद म्यूजिक, क्योंकि वो बड़े शाय किस्म के थे और उन्हें ये आइडिया भी नहीं जमता था कि वो किसी और के कंपोज किए हुए गाने गाएं। सनम चाहते थे कि वो खुद ही गाने लिखें, कंपोज करें और गाएं, तब जाकर के शायद वो गाने को फील कर पाएंगे। इसीलिए उनका प्लान प्लेबैक सिंगिंग करने का था नहीं, वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बनाना चाहते थे और अपने बैंड के साथ मिलकर के, इसलिए उन्होंने खुद ही इन गानों के ऊपर वीडियोस बनाने का भी तय किया। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच के रखा था और उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो ही गई। उनके गाने जैसे धत तेरी की और इश्क बुलावा बड़े हिट बन गए। कैसे मिला था सनम को इन सॉन्ग्स को गाने का मौका, ये अपॉर्चुनिटी इनके हाथ आखिर आई कैसे, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सनम पुरी का अगला गाना सुनाते हैं आपको, 90s का सबसे रोमांटिक गाना सनम के अंदाज में। स्टे ट्यून्ड।

मैं हूँ रुचि आपके साथ। जानते हैं सनमपुरी के जो मैनेजर हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर के भी मैनेजर रह चुके हैं और उन्होंने ही सनम की मुलाकात विशाल शेखर से करवाई और कुछ ऐसे विशाल शेखर ने सनम को अप्रोच किया कि वो आए और आकर के धत तेरी की गाने को गाएं। लेकिन ये गाना जो था वो काफी आसान था, इसलिए सनम ने हाँ भी कह दिया और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया। जब ये गाना इतना अच्छा चल गया, हिट हो गया, तो विशाल शेखर ने सोचा कि इश्क बुलावा जो सॉन्ग है उसके लिए भी सनम को बुलाया जाए। इनिशियली सनम को लगा कि ये गाना भी धत तेरी की सॉन्ग की तरह ही होगा, यानी कि बस कुछ ही देर में निपट जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये गाना काफ़ी डिफिकल्ट निकला, लेकिन सनम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस गाने को रिकॉर्ड किया। और जब ये गाना रिलीज हुआ तब तो मानो की पूरी किस्मत ही पलट गई सनमपुरी की। ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया और इसी गाने से सनमपुरी ने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और सभी लोगों ने सनम को और सर्च करना शुरू किया। एंड दैट इज़ हाउ जो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोस बनाते थे उनके भी व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और फैन फॉलोइंग जो थी वो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ने लग गई। तो कुछ ऐसे ही गाने जिनके कि हम बहुत बड़े फैन हैं, 60s, 70s, 80s के सुपरहिट सॉन्ग्स जिनका कवर वर्जन बनाया है सनम द बैंड ने, वही यहाँ पर अभी आपको सुना रही हूँ। सुनिए ये अगला गाना, ये रात भीगी फीगी।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: नमस्कार दोस्तों, हूँ आरजे हर्ष भटारिया, रेडियो पालनपुर 90.4 FM थी। आज आपने बात करीशु गुलजार साहेब नी। यस, गुलजार साहेबे लखेला केटलाक मशहूर गीतो, नज़मो, शायरीओ, गजल, रोमांटिक कॉर्ड्स बधुं एटलुं सुंदर रीते लखेलुं छे के हजी पण आपणा होठो पर ते हमेशा रहे छे। गुलजार साहेब आजे पण पोताना शब्दोनो जादू बधाना दिलो पर राज करे ए रीते लखे छे। तो आजे आपणे सांभळीशुं गुलजार साहेबना अवाजमां केटली नज़मो अने साथे साथे एमणे लखेला केटलाक सुंदर मजाना गीतो। तो बन्या रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM पर।
5: सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है।

0: सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में, पांव बेहिस हैं चलते जाते हैं, एक सफर है जो बेहतर रहता है। कितने बरसों से कितनी सदियों से जिए जाते हैं जिए जाते हैं। आदतें भी अजीब होती हैं, सांस लेना भी कैसी आदत है। सिर्फ एहसास कि तुम पास हो बस, सिर्फ एहसास के नजदीक हो तुम। अनगिनत लोगों में घबराई हुई, अजनबी आंखों से लज्जाई हुई, तन पे लगती हैं चिपकती आंखें, बर्फ सी ठंडी सुलगती आंखें। अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा, सैकड़ों तागों में उलझाई हुई, सहमी सिमटी हुई शर्माई हुई। सिर्फ एहसास के पास हो तुम, सिर्फ एहसास के नजदीक हो बस। सुनहरी कुंजें जब उड़ते उड़ते उफक की टहनी पे बैठ जाएं, तुम्हारे कंधों पे झुक के जब शाम बोसा ले ले, चराग खोलें जब अपनी मध्यम उदास आंखें, तुम अपने चेहरे पे खींच लेना है आंचल, मैं हौले हौले मना के आंचल उतार लूंगा। तुम्हारे होंठों के ठंडे ठंडे गुलाब आंखों पे रख के मैं रात को सुनाऊंगा फिर उसी नींद की कहानी, वो नींद जो जागते मिली थी तुम्हारी आगोश के सुकून में। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम, बहुत जी चाहता है फिर से बोऊं अपनी आंखें, तुम्हारे ढेर से चेहरे उगाऊं और बुलाऊं बारिशों को, बहुत जी है कि फुर्सत हो तसव्वुर हो, तसव्वुर में जरा सी बागबानी हो। मगर जाना एक ऐसी उम्र में आकर मिली हो तुम, किसी के हिस्से की मट्टी नहीं हिलती, किसी की धूप का हिस्सा नहीं छिनता, मगर अब मेरी क्यारी में लगे पौधे किसी को पांव रखने के लिए भी थां नहीं देते। ये कैसी उम्र में आकर मिली हो तुम।
1: ज्यादा

बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म डूबान जल रहा है।

0: गुलजार साहेब एक बहुत मजानी बात कहे छे कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तो सांभळिए आपणे गुलजार साहेब ने पछी साथे एमनो बैक टू बैक मस्त मजानो सॉन्ग साथे।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, लबों की मध्यम तवील सरगोशियों में सांसें उलझ गई थीं, बूंदे हुए साहिलों पे जैसे कहीं बहुत दूर ठंडा सावन बरस रहा था। बस एक ही रूह जागती थी। बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी। कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूं अपनी नज्मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से, वो घूर के देखती हैं मुझको, सवाल करती हैं उनसे मैं हूं या मुझसे हैं वो। वो सारी नज्में कि मैं समझता हूं वो मेरे जीन से हैं, लेकिन वो यूं समझती हैं उनसे है मेरा नाक नक्शा, ये शक्ल उनसे मिली है मुझको। मिजाज पूछूं मैं क्या, एक नज्म आगे आती है छू के पेशानी पूछती है, बताओ अगर इंतशार है कोई सोच में तो मैं पास बैठूं, मदद करूं और बीन दूं उलझने तुम्हारी। उदास लगते हो एक कहती है पास आकर, जो कह नहीं सकते तुम किसी को, तो मेरे कानों में डाल दो राज अपनी सरगोशियों के, लेकिन गर एक सुनेगा तो सब सुनेंगे। भड़क के कहती है एक नाराज नज़्म मुझसे, मैं कब तक अपने गले में लूंगी तुम्हारी आवाज की खराशें। एक और छोटी सी नज्म कहती है, पहले भी कह चुकी हूं शायर, चढ़ान चढ़ते अगर तेरी सांस फूल जाए तो मेरे कंधों पे रखते कुछ बोझ मैं उठा लूं। वो चुप सी एक नज्म पीछे बैठी जो टकटकी बांधे देखती रहती है मुझे, बस न जाने क्या

है कि उसकी आंखों का रंग तुम पर चला गया है। अलग अलग हैं मिजाज सबके, मगर कहीं ना कहीं वो सारे मिजाज मुझ में बसे हुए हैं। मैं उनसे हूं या हाँ, मुझे यह एहसास हो रहा है जब उनको तखलीक दे रहा था

के ही तन्हाई के नीचे कार्बन पेपर रख के मैं ऊंची ऊंची आवाज में बातें करता हूं। अल्फाज उतर आते हैं कागज पर, लेकिन आवाज की शक्ल उतरती नहीं, रातों की स्याही दिखती है। जैसे झन्ना के चटक जाए किसी साज का एक तार, जैसे रेशम की किसी डोर से कट जाती है उंगली, ऐसे एक जर्ब सी पड़ती है कहीं सीने के अंदर, खींच कर तोड़नी पड़ जाती है जब तुझसे निगाहें। तेरे जाने की घड़ी आह बड़ी सख्त घड़ी है।

0: बस एक झगड़े का लम्हा था। दरो दीवार पर ऐसे छनाके से गिरी आवाज जैसे कांच गिरता है। हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें, नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर। लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब किसी ने काट ली नब्जें, न की आवाज तक कुछ भी कि कोई जाग न जाए। कुछ ऐसे आकर गिरा है सोते में शाख से फूल मेरे चेहरे पे, जैसे हौले से रात तुम नाम लेके मुझको जगा रही थी।
1: यादें
0: सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। रात भी वैसे ही सर मुंदे आती है, दिन वैसे ही आंखें मलता जागता है। तारे सारी रात जमाइयां लेते हैं। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे चलता था जब तुम थी। काश तुम्हारे जाने पर कुछ फर्क तो पड़ता जीने में। प्यास न लगती पानी की, या नाखून बढ़ना बंद हो जाते। बाल हवा में न उड़ते, या धुआं निकलता सांसों से। सब कुछ वैसे ही चलता है, बस इतना फर्क पड़ा है मेरी रातों में। नींद नहीं आती तो अब सोने के लिए एक नींद की गोली रोज निकलनी पड़ती है। खोल कर बाहों के दो उलझे हुए मिसरे, होले से चूम के दो

से छलकी पलकें, होंठ से लिपटी हुई जुल्फ को मिन्नत से हटाकर कान पर धीमे से रख दूंगा जो आवाज के दो होंठ। मैं जगाऊंगा तुझे नाम से सोना, और तुम धीरे से जब पलकें उठाओगी ना, उस दम दूर ठहरे हुए पानी पे सहर खोलेगी आंखें। सुबह हो जाएगी तब, सुबह जमीन पर। रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने आला थापा, रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने आला थापा। मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी हैं, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तूने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी। तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी। रात भर जो भी मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे। रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गर्माइश पर, सीली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी

ही और नहीं भी, नापा तोला कुछ भी नहीं। लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। मुंह मोड़ा और देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों। आप लड़े थे हमसे बस एक करवट की गुंजाइश पर। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर, दिल में कितने खुश थे अपनी फुरकत की आराइश पर। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है। जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो, और पानी के छपाकों में बजा करती हूं टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं। चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। रूह देखी है कभी। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी का ढेला, रूह 1 बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी। रूह को महसूस किया है। कल की रात गिरी थी शबनम, हौले हौले कलियों के बंद होंठों पर बरसी थी शबनम। फूलों के रुखसारों से रुखसार मिलाकर नीली रात की चुंदरी के साए में शबनम परियों के अफसानों के पर खोल रही थी। दिल की मध्यम मध्यम हलचल में दो रूहें तैर रही थीं, जैसे अपने नाजुक पंखों पर आकाश को तोल रही हों। कल की रात बड़ी उजली थी, कल की रात उजले थे सपने, कल की रात तेरे संग गुजरी। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पर रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। कल सुना है जमीन से उठ गया है वो। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात। तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी, पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से जरस की जले नमनाक सदा, और झुकती हैं तो बस जैसे अजां खत्म हुई है। तेरी आंखें तेरी ठहरी हुई गमगीन सी आंखें, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है सच्ची, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है ये हयात।

0: में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो पालनपुर पर हूँ छू तमारो दोस्त तमारो होस्ट आरजे एआर आपना अवाज समा सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जेने बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित करे छे तेना पर हूँ दर अठवाडिये सुधा मूर्ति लिखित अने सुधा मेहता द्वारा गुजराती में अनुवादित नवल करतू इतले कि घरनी मुर्गी दाल बराबर आजे कहावत छे ने कारण के गमे तेटली विदेशी मिठाईओ ने ए आपणे स्वाद में सारी न लागे तो पण एने विदेशी होवानु बहुमान मळी जतुं होय छे एवी ज वात आ नवलकथाना अंशोमां छे। सुंदर मजानी श्याम सुरभी अने मीनाक्षी आ बधानी वातो लईने हूँ आवुं छुं अने अनुसंधान आपणे अटक्या हता अने हवे नीलावा પોતાની ડોલર વહુના ગર્ભાધાન થયા બાદ જે સંતતિ આવવાની છે એના ઉછેરનું કારણ મેળવી પોતાના દીકરા પાસે અમેરિકા જવાના છે અને હવે સાચે જ ત્યાંની એ ડોલરની પરિસ્થિતિ તેમને કેવો અહેસાસ કરાવશે એ આપણે સૌએ માણવાનું છે। તો આવો આ વિરામ બાદ વાતને આગળ વધારીશું। સમય થયો છે આ વિરામનો। मस्त रहो व्यस्त रहो ने सांभलता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।